Hello, hello, hello. Namaste, Sat Sri Akaal, und Grüß Gott. Salzburg. Okay, थोड़ा सा टेक्निकल वजूहत के बाइस जो है फ़िबिंदुंग वो सही नहीं थी. सो इसलिए मैंने पहले गाना चला दिया था. सो हियर वी गो. आई एम निमरा आलम एंड यू आर हियरिंग पाक इंडिया एक्सप्रेस. एक बार फिर से आई एम देयर विद अ न्यू program. The program is going to be full of energy like it is always, and this show is going to be the last show before Ramadan, because afterwards we are going to play all the kalams and all the Sufi stuff and hamde aur nate aur is tarah ki cheeze hum chalane wale hain, aur hum bahut zyada Ramzan ke bare mein aur Islamic cheezon ke bare mein baat karne wale hain. Maine bahut zyada zakhira ikattha karke rakha hai cheezein ka jo main aapke sath discuss karna chahti hu Ramzan special mein. We are going to have two Ramzan special shows. The one is going to be, inshallah, one is going to be on the 17th. I don't know it's not going to come into Ramzan. So, but still, I want to talk about all those, कुछ किस्से कहानियों के बारे में बात करेंगे जो इस्लाम से रिलेटेड हैं. तो 17th को हमारा अगला शो होगा, और उसके बाद हमारा एक और शो होगा, दैट्स गोइंग टू बी ऑन द 10th, और उसके ऑन द 3rd. And 17th of मार्च का हमारा शो जो है वो भी रमज़ान स्पेशल होने वाला है. अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो मैं तीनों शोज़ जो हैं वो रमज़ान स्पेशल कर लूँ, बिकॉज 17th बिल्कुल रमज़ान से पहले है, और तीनों कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज़ आई हैव सो मेनी थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं आजकल पॉडकास्ट सुन रही हूँ जो कि बहुत ही एकदम दिमाग फाड़ देने वाला है, और इस वजह से मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ भी उस बारे में बात करूँ. और let's do some amazing and full of energy and full of knowledge shows in Ramadan also. It's going to start on 18th or 19th, inshallah, or it's going to be till 20th or 19th or 20th. Let's see how it goes. But very excited about Ramadan, because this time Ramadan is going to fall in winter, almost winter. And the summertime is going to change at the end of March. That means Hamara Roza is going to be only for like, what? Only till 5 o'clock? 5:30? 6 o'clock. 5:30, 6 o'clock. So it's going to be very interesting. Because mere jaise log jab zyada kaam karte hain to wo 4 baje tak kaam karte hain, aur 5 baje aapka roza, 5:30 baje aapka roza khul raha hai. Aajkal maghrib itni jaldi ho jati hai. Maine pichle dino kuch roze rakhe Rajab ke, Shawwal ke, aur us time par wo aapko pata bhi nahi chalta. Shaban ke, sorry, Shawwal ka hai maine. Sorry. तो मैंने रोज़े रखे अभी, तो पिछले दिनों मुझे पता भी नहीं चला कि अच्छा मतलब टाइम गुजर गया है. तो आई होप कि आप सब लोग अगर रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजरे, और आप लोग अपना सब तैयारी करके रखें, समोसे पट्टियाँ वटियाँ सब मंगवा के रखें, फ्रिज भर लें, और लेकिन पूरी कोशिश करें कि हेल्दी तरीके से खाने बनाएं और हेल्दी रहें. और असल मकसद जो है वो है रमज़ान में इबादत करने का. सबको दुआओं में, मुझे भी दुआओं में याद रखें, अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें, खुद से मोहब्बत करें, दूसरों का ख्याल रखें. और इसी नोट के साथ हम लोग अपना गाना आगे कंटिन्यू करने लगे हैं, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग. भाई साहब, हियर वी गो. एंड यू हैव टू नो, ऑल दोज पीपल हु लिसन टू मी रेगुलरली शुड नो कि ये पार्ट बेस्ट पार्ट क्यों है. हियर वी गो. अभी थोड़ा म्यूजिक है. ओके, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है.

अरे वाह, गाना इतना लंबा है कि उसके अंदर ऐड आ गई भाई साहब। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। मैं दोबारा गाना चलाने लगी हूँ। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, एंजॉय कीजिए। हियर वी गो, रिज्यूम। जी हाँ,

0: So, हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे थे बॉर्डर का बॉर्डर टू का गाना संदेश से आते हैं. और क्यों अच्छा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ ओके कि वो वाला पार्ट सबसे बेस्ट क्यों होना चाहिए. व्हाई डू आई ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन माय फेस व्हेन आई लुक व्हेन आई लिसन टू दिस पार्ट. दैट्स फॉर यू टू नो एंड या नहीं मजाक कर रही हूँ. इट्स दिलजीत पार्ट एंड आई एक्चुअली सीरियसली डिडंट नो दैट ये दिलजीत का पार्ट है. और मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि डिड यू हियर जहाँ पे दिलजीत का आता है ना. आई वाज लाइक व्हाट एंड ही वाज लाइक या दिलजीत ने भी तो गाया है. एंड आई वाज लाइक ओह नहीं यार हाउ कैन आई मिस दैट. एंड मुझे पहले बड़ा थोड़ा सा वो झटका लगा दैट आई डिडंट रियलाइज इट. उसके बाद फिर मैं क्या कोई गल नहीं पाई हो जाता है कोई नहीं कोई नहीं. अच्छा जहाँ हम म्यूज़िक और इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ जो पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त मतलब एकदम शौक के सूरत में आई वो थी दैट अरिजीत एक्चुअली लेफ्ट प्लेबैक सिंगिंग. इफ़ यू लिसन टू द बॉर्डर का भी गाना तो उसके अंदर थोड़ा सा वो वियर्ड लगता है बिकॉज इट्स नॉट अरिजीत्स फोर्टे और इट्स नॉट लाइक यू कैन एक्चुअली हियर दैट द गाय वाज नॉट फीलिंग इट और ही इज़ नॉट क्या कहते हैं वो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाने वाला लहू यू नो बॉयल करने वाला सिंगर. ही इज़ लाइक जो जिसकी आवाज़ में दर्द है और जिसकी आवाज़ मतलब वो मैंने एक मीम पढ़ा था कि अरिजीत भाई ने देशभक्ति के सॉन्ग में भी एक्स की याद दिलवा दी. तो वो एक्चुअली कुछ वो वाला ही सॉन्ग ऐसा लगता है दैट वही वाली फील आती है कि एक एकदम से रोमांटिक गाना शुरू हो गया है. बट ऑब्वियसली इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड ऑब्वियसली ही सिंग्स ऑलवेज वेरी वेल एंड ऑब्वियसली इट गोज़ विदाउट सेइंग. सो इट वाज अ शॉकर दैट ही इज़ लीविंग. देर आर मेनी सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत दैट आई जस्ट लव. चन्ना मेरिया हैज़ टू बी ऑन द टॉप ऑफ इट लाइक सीरियसली. चन्ना मेरिया का एक एक, एक वो यू नो उसका जो एक वो बनाया ना क्या कहते हैं उसको मूड बनाया ना वो अरिजीत ने ही बनाया. तो वो एक वो जो आपको दर्द फील होनी चाहिए ना गाने सुन के वो एक्चुअली दर्द आपको फील होती है. बल्कि अरिजीत के ऐसे सॉन्ग्स होते हैं कि सिनेरियोज आप खुद बनाने लग जाते हो दिमाग में ऑल्दो आपके साथ वो ऐसा कभी कुछ हुआ भी नहीं होता. सो दीज आर द काइंड ऑफ दिस इज़ द पावर म्यूज़िक हैज़ बिकॉज आपको वो वाले इमोशंस फील करवाता है जो आपने कभी फील भी नहीं किए होते हैं. एंड दैट इज़ लाइक crazy how powerful music is. So इसी वजह से हम चलाने लगे हैं अरिजीत के कुछ अच्छे सॉन्ग्स जो मुझे बहुत पसंद हैं. आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा यूनिवर्सल होने की कोशिश करूँ बट मैं बायस टू बिकॉज ये मेरा शो है तो तो मैं वो वाले गाने चलाने लगी जो मुझे बहुत पसंद हैं. द फर्स्ट सॉन्ग दैट आई रियली लाइक इज़ फिर भी तुमको चाहूँगा. आई रियली रियली लाइक दिस सॉन्ग. आई वॉन्ट कि आप लोग सुनिए इंजॉय कीजिए.
1: और जी हाँ
0: आवाज़

सो हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे हैं पाक इंडिया एक्सप्रेस, उनमें हूँ निम्रा आप लोगों के साथ. और हम लोग बात कर रहे हैं सारी कूल हैपनिंग्स की जो अभी पिछले कुछ दिनों में हुई हैं. उसमें से एक जो बहुत ही सिग्निफिकेंट बात थी वो ये थी दैट पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा था भाई साहब पाकिस्तान के अंदर, एंड पाकिस्तान समहाउ मैनेज टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट मैच लाइक T20. Are you kidding me? I was like, ये क्या हो रहा है? पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि भाई हो क्या रहा है ये, मतलब ये पाकिस्तानी टीम ही है और ये वही सब प्लेयर्स हैं जिनको हम सदियों से जानते हैं, मतलब it was like unbelievable. ठीक है, लेकिन मैचेस बहुत मज़े के थे. मुझे बहुत कभी कभार फील होता है दैट मेरे बच्चे जो हैं वो उस तरह से म्यूज़िक उस तरह से जो क्रिकेट है वो नहीं देख पाते जिस तरह से हम लोग देखते थे जब हम छोटे थे. उस टाइम पर जो क्रिकेट होता था लाइक वसीम अकरम, शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, देयर वाज सईद अनवर, यूसुफ, इंज़मामुल हक, ऑल दोज बिग नेम्स. तो मुझे कभी कभार अपने बच्चों के लिए बहुत फील होता है कि उन लोगों ने उस तरह वाला क्रिकेट नहीं देखा जो हम लोगों ने देखा हुआ है. एंड आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि आगे जाके पाकिस्तान के हालात उस तरह के हों कि मेरे बच्चे भी आगे उस तरह से प्राउड हो सकें जिस तरह से हम लोग एक टाइम पे प्राउड हुआ करते थे. ऑल दो द सिचुएशन विद इमरान खान इज स्टिल द सेम, लेकिन आई जस्ट रियली होप विश एंड प्रे दैट सैनिटी प्रिवेल्स और चीज़ें जो हैं वो किसी तरफ अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकें. या उम्मीद पे दुनिया कायम है. या अगर सोचेंगे नहीं तो होगा नहीं. ठीक है, तो हाँ, तो ये बात हो रही थी. उसकी दूसरी तरफ इंडिया के मैचेस हो रहे थे. फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने वो इतना कुछ देखा नहीं है, लेकिन अंडर 19 का हो रहा था वो मैंने ज़रूर देखा है, वो जो पाकिस्तान हारा, आई थिंक दैट वाज द फाइनल मैच और समथिंग लाइक दैट. तो अंडर 19 का मैच मैं देख रही थी वो या और ऑब्वियसली अंडर 19 की या विमेन टीम की जब ऐसी चीज़ों की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, आपकी जो ग्रास रूट लेवल है वहाँ पर अच्छे खिलाड़ी निकालने के लिए किस तरह से इनकरेज किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं. तो वो एक स्ट्रक्चर किस तरह का है उस पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान में नहीं होता. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो एंड मतलब आखिरी दिन तक उनको जो है वो किया जाता है कि छोड़ देखेंगे हर चीज़ पाकिस्तान देखे में चलती है. तो जी हाँ, तो क्रिकेट वाला अच्छी चीज़ थी, ये मज़े की चीज़ें थी जो या उसके बाद अरिजीत की जहाँ पे बात हो रही है तो अरिजीत के थोड़े से और गाने चलाते हैं, बिकॉज मैं आप लोगों को बताई थी कि मुझे चन्ना मेरिया बहुत पसंद है. तो लेट्स प्ले चन्ना मेरिया और इट विल बी अ गुड काइंड ऑफ फेयरवेल टू अरिजीत. ऑल्दो ही इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ही विल स्टिल बी सिंगिंग द सॉन्ग्स, लेकिन आई थिंक वो अपने प्राइवेट लेबल के साथ ही करने वाला है एंड ही विल नॉट डू प्लेबैक सिंगिंग, बिकॉज इंडिया जैसे मुल्क में प्लेबैक सिंगिंग जो है वो एक्चुअली बहुत प्रोमिनेंट है. तो अगर किसी म्यूजिशियन को मशहूर होना है तो वो ऑब्वियसली एक सहारा प्लेबैक सिंगिंग का ही होता है. पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड साइड इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन पॉप कल्चर और वहाँ पर प्लेबैक सिंगिंग उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है जितनी पॉप कल्चर और एल्बम्स और गाने और ये सारा कुछ है. और आजकल तो स्ट्रीम वगैरह भी हो रहा है, तो आई थिंक दिलजीत इज़ गोइंग टूवर्ड्स द साइड जहाँ पर ही विल बी रिलीजिंग हिज ओन एल्बम एंड डूइंग हिज ओन म्यूजिक एंड वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड क्रिएट म्यूजिक द वे ही वांट्स टू क्रिएट इट, बिकॉज ही इज़ अ क्रिएटिव गाय एंड दैट वी हैव बीन सीइंग. पता नहीं कौन से ज़माने से, मैं छोटी सी थी जब से मैं अरिजीत की स्ट्रगल देख रही हूँ एंड ऑल दैट. तो हियर वी गो विद द वेरी वेरी क्लासिक number of Arijit Singh. Here we go.

Oh my God, that is Arijit Singh for you. मतलब आप अगर ये गाना अकेले बैठकर here we go. ये गाना अगर आप अकेले बैठकर अपने कानों में हेडफोन्स लगाकर अकेले बस रात को सुकून से सुने, इट कैन प्रोवोक सो मैनी इमोशंस इन यू, इट कैन हील सो मैनी ब्रोकन थिंग्स इन साइड यू, इट कैन डू मैजिक विद योर फीलिंग्स. मतलब अरिजीत सिंह एंड दोज लिरिक्स, इट्स लाइक मैच मेड इन हेवन्स, लाइक सीरियसली. और मुझे ऐसा लगता है कि आज का शो हम अरिजीत के बारे में ही करते हैं जितना हो सकता है, बिकॉज ही हैज सो मैनी सोलफुल सॉन्ग्स. इट्स नॉट दैट ही इज़ गोइंग ऑब्वियसली, बट स्टिल इट्स लाइक ही डिड प्ले बैक सिंगिंग. एंड आतिफ असलम जिस टाइम पर बैन हो रहा था और अरिजीत को एकदम से ब्रेकअप मिल रहा था, ब्रेक थ्रू मिल रहा था, उस टाइम पर ऐसा लगता था दैट यू नो ही इज़ लाइक ही डज अ लॉट ऑफ नेजल सिंगिंग और बहुत ज़्यादा आतिफ असलम को कॉपी करने की कोशिश है और इस तरह की चीज़ें. But the way he has brought emotions in songs or jis tarah se usne un cheezon ko express karta hai apni kisi bhi cheez ki feelings wo something else and like yeah, it's the same thing that's with Sonu Nigam, for example, like Border mein the guzarne wali hawa, this thingy is like nobody can sing it better than Sonu Nigam. And usi tarah impactful singing agar uske baad kisi ne ki hai to it was Arijit, because although Shaan is a very good singer, Abhijit is a very good singer, Udit Narayan and all of those singers, they are very good playback singers, but वो एक होता है ना एक impactful singing, एक impact डालना और लोगों को उस actually उस दर्द में और उस feel में लेकर चले जाना, वो only few people can do, and Arijit was one of them, or he is one of them. इसी नोट के साथ हम लोग एक और गाना चलाते हैं और उसके बाद जब आएंगे आप लोग वापस तो और भी कुछ बातें करेंगे. और मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं साउथ की, यस, हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे. मैं वो चीज़ें भी आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज साउथ द वे दे आर डूइंग सिनेमा, इंडिया में वैसा कोई भी नहीं करा, तो वी हैव टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स. हे वी गो, दिल संभल जा ज़रा और आप लोग सुनिए और इन्जॉय कीजिए, बिकॉज इसमें भी बहुत इमोशन है. या फिर कबीरा चला दूँ. मैं देर आर सो मैनी सॉन्ग्स के समझ नहीं आती कि क्या चलाएं. कबीरा सुनते हैं, ठीक है? हियर वी गो. हाय

Oh my God, such good songs. और मैं अरिजीत के सॉन्ग्स लगाते लगाते साथ में और गाने चलाना शुरू हो गई हूँ जो मुझे बहुत पसंद है. तो मतलब हम दोबारा आते हैं अरिजीत की तरफ. और अरिजीत का एक सॉन्ग जो मुझे यहाँ पर भी बहुत लोगों ने पूछा कि ट्रांसलेट करके बताओ उसका क्या मतलब है, वॉज द एड शीरीन वाला सॉन्ग. एंड एवरीबडी सेफायर एंड एवरीबडी वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड अबाउट द सॉन्ग बिकॉज द सॉन्ग इज़ सो गुड. और इस वजह से मैं चाह रही थी कि ऑल्दो मैं इंग्लिश गाने नहीं चलाती हूँ बट लेट्स प्ले एड शीरीन सॉन्ग इज वेल दैट्स fire and uske andar obviously Arijit is there and he gave his voice and I think the areas there are roaming around wo bhi areas wahi hain jiske andar jahan pe wo rehta hai and I was watching a video about Arijit and how he lives and I think he's like sukoon dhoond raha hai aur music ka asal maqsad bhi yahi hota hai ki aap sukoon dhoond rahe hote ho to mujhe aisa lagta hai ki jab sunne walon ko itna sukoon milta hai to jo kar raha hota hai usko kitna sukoon mil raha होगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उसी सुकून की तलाश में है और वहीं पर वो बुलाता है अपने घर में और वहाँ पे वही अपनी चीज़ें रिकॉर्ड करता है. और ये सारी स्टोरी जो मैं सुन रही थी मुझे वो एक्चुअली उसको स्टोरी को सुन के मुझे लगा कि ही इज़ लुकिंग फॉर पीस, ही इज़ लुकिंग फॉर सुकून. एंड पहले हम प्ले करते हैं सैफायर और उसके बाद हम प्ले करेंगे सुकून. एंड या सो हियर वी गो विथ सैफायर. लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि एडें आ रही हैं जी. और या आज मैंने बहुत ज़्यादा गाने चलाए हैं बिकॉज़ मैं कुछ अरिजीत के वो उसमें जोन में चली गई थी. और हमने काफ़ी देर से इस तरह से गाने बैक टू बैक गाने वाली चीज़ भी नहीं की तो आई वाज लाइक काइंड ऑफ मिसिंग इट. सो हियर वी गो विद अ सॉन्ग दैट वाज इज़ वेरी memorable and all.

फील हो रहा था दैट ओके आई एम काइंड ऑफ स्केयर्ड नाउ, तो दैट वाज अ गुड मूवी. और अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है तो वो ज़रूर देखिए. और उसके साथ में आई वॉच्ड साउथ और तमिल की मूवीज़. आई फील सो बैड दैट आई डिडंट राइट द नेम्स. और मुझे लगता है कि मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए अपने वो सारी सजेशंस जो हैं वो नाम लिख लेने चाहिए, बिकॉज दिस द मूवीज़ आर समटाइम्स सो गुड. एंड देर वॉज वन मूवी दैट आई वॉच्ड, इट वॉज ऑल्सो फ्रॉम साउथ एंड इट वॉज सम माया समथिंग, आई फॉरगॉट, मलयालम की मूवी थी एंड द नेम वॉज there was something like Maya, and the movie was so good. Like, it was such feel good movie, like such feel good movie. I just like cried my heart out. And mujhe wo movie dekhkar actually aisa laga that there was something that was healing inside me. And I was like so. It touched me, seriously. That movie touched me. And next time, जब हम लोग बात करेंगे तो although हम लोगों का रमज़ान स्पेशल होने वाला है, but मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं वो मूवीज़ के नाम लेकर आऊँ, because the movie was so good. Then the name मुझे अच्छे से याद नहीं है, but it was I think Sarvam Maya. I think the name was Sarvam Maya. अगर आप लोगों के पास टाइम है तो please Sarvam Maya ज़रूर देखिए. और it was like even till the last scene the movie will give you such सुकून, द एग्जैक्ट थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अरिजीत. ऐसी मैं जब भी कभी कोई, मतलब मैं इंडियन मूवीज़ ज़्यादा नहीं देखती, इवन मैंने धुरंधर अभी नेटफ्लिक्स पे आ गई मैंने नहीं देखी है, बिकॉज मुझे मूवी नहीं देखनी है, बिकॉज दे वो अच्छी मूवीज़ नहीं बनाते हैं, यू नो. और मुझे साउथ की मूवीज़ कोई सी भी हो, मलयालम हो या फिर कोई और लैंग्वेज में हो, तेलुगू हो, कुछ भी हो, मैं आंख बंद करके देखती हूँ. मतलब सीरियसली, मैं माय हस्बैंड आस्क्स मी ओके हम कोई साउथ की मूवी लगा रहे हैं और मैं उसी वक्त वो मूवी देखती हूँ, बिकॉज मुझे पता होता है कि द मूवी इज़ गोइंग टू बी आर्टिस्टिक, द मूवी इज़ गोइंग टू बी नॉट एक टाइम वेस्ट, द मूवी इज़ गोइंग टू बी आर्ट, the art that you study in universities or things like that. वो मूवी की स्टोरी राइटिंग इतनी अच्छी होती है, उनका डायरेक्शन इतनी अच्छी होती है, मतलब आप एकदम दंग रह जाते हो कि भाई हो क्या रहा है. एंड आई जस्ट लव दिस थिंग अबाउट द साउथ सिनेमा, नॉट ओनली लाइक मलयालम और नॉट ओनली लाइक तेलुगू और समथिंग, आई कैन नॉट स्पेसिफिकली से कि कौन सा वाला, बट द होल थिंग दे मेक आर्ट. और अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर देखिएगा. इसी नोट के साथ हमारा शो जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है. एंड आई वांट टू प्ले आखिर में सुकून, दैट्स अ सॉन्ग दैट अरिजीत सिंह अभी और सलीम सुलेमान ने कंपोज किया है. और आई रियली लाइक सलीम सुलेमान्स मेलोडीज़. समटाइम्स मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, लेकिन समटाइम्स इट्स लाइक वेरी सोलफुल. और इस एंड देन अरिजीत सिंगिंग एंड एवरीथिंग, तो आई रियली वांटेड टू प्ले दैट सॉन्ग अभी लास्ट में शो रैप अप करते हुए. हम लोग अब मिलेंगे आप एक दूसरे से लाइक मिड ऑफ फेब्रुअरी. और आप लोग सब अपना ख्याल रखिए. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे इस साल 10 ईयर्स कम्प्लीट हो रहे हैं शो के, एंड मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. और आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी सिंगल टाइम वाई I am doing that, and the peace and the sukoon I get whenever I am at Radio Fabric, I'm like always being thankful, because this has actually worked like a wonder for me also. Because jab aap akele hote ho to aapko kuch sukoon chahiye hota hai, koi sahara chahiye hota hai, wo sahara mere liye has always been this program. And thank you so much for all the feedback you give me, like isi tarah aage bhi feedback bhejti rahi. Aur thank you so much for understanding jab kabhi main shows nahi kar आती हूँ तो उसके बावजूद मुझे हमेशा फीडबैक आप लोगों का आता है. एंड यू लाइक, मैं लोगों को जानती भी नहीं हूँ, मुझे ये भी नहीं पता होता कि कौन है क्या है, लेकिन छोटी सी एक लाइन भी अगर लिखी हो तो मतलब इट मेक्स माय डे. एंड थैंक यू सो मच. एंड इसी तरह सपोर्ट करती रहिएगा. एंड हियर वी गो विद सुकून. एंड आपका जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप सबको मेरा दुआ सलाम और प्यार पहुँचे. अस्सलाम वालेकुम सॉल्ज़बर्ग, एंड हियर इज़ अरिजीत सुकून फॉर यू.